गोविंद नाम मत बीसरे। ए बैन उस गोविंद दा नाम ना विसरे, क्योंकि जे नाम विसर गया ता फिर की हाल होवेगा, जुड़ना विच भटकना पवेगा, दुखी होवांगे इंसान इस दुनिया विच।

अपनी लड़कियां नाल प्यार करता है, सोने मकान बनाने वास्ते यतन करता है। ऐसे इंसान भी ने जिहड़े इन्हां चीजां नाल प्यार करदे, पर उन्हां नूं अखीर मिलदा की है? आप जी बयान करदे ने ते जिहड़ा इंसान परमेश्वर दे नाल प्रीत करे उन्हूं की मिलदा है? भगत त्रिलोचन जी अपने शब्द विच बयान करदे ने, अखीर नतीजा यह कढ़िया, दुनिया नाल प्रीत करो तां दुख मिलदे ने, उस गोबिंद दे नाम दे नाल प्रीत करो तां उहदे चरणां विच

अंत काल जो लक्ष्मी सिमर लक्ष्मी के माया जेड़ा इंसान सारी उम्र यही सोचता रवे कि वध तू वध पैसे कमा लो भावे ओदे वास्ते पाप करने पे भावे ठगी करनी पवे भावे डाका मारना पवे पर पैसे जरूर कठे कर अंत वेला आंदा नाम नहीं जपया मरण लग गए ते तामी चिंता करता है कि दुनिया तू एवें तुर चले हैं मन मुताबक कमाया भी नहीं कमाई अंत वेले माया वाल ध्यान मौत हो गई तां भगत जी बयान करते ने उस इंसान नू अगला जन्म

अंत काल जो लड़के सिमरे, जिड़ा इंसान सारी उम्र तिया पुत्रां वाली ध्यान रखे, नाम ना जपे, अंत वेले भी उदा ध्यान लड़कियां वाल है, नाम नहीं जपया, नाम वाल ध्यान नहीं। जे लड़के होए आज्ञाकारनी तां दुखी, जे लड़का कोई नहीं होया तां दुखी। ए नहीं कहिंदा कि परमेश्वर जे तू दिता तेरी खुशी, जे लड़का नहीं दिता तां भी तेरी खुशी। उदा नाम नहीं जपया, अंत वेले भी लड़के का ध्यान मौत हो गई तो

नाम ना जपे मौत हो जाए ता ओदा अगला जन्म सुकर जोन अगला जन्म ओनू सूर दा मिल जाए। आपने देखे होवेगा के सूर दे सत सत अठ अठ बच्चे होंदे ने। इस तरह ओ इंसान सूर दी जूने पै के अपने बच्चियां वाली तृष्णा पूरी करता है। भगत जी कहंदे ने जिहड़ा अंत वेले लड़कियां वल ध्यान रखे अगले जन्म विच

कोई मकान भी ना बना सके, सिमरन नहीं कीता, मरन लगे हां भी सोने मकाना वाले ध्यान, इसे चिंता विच ही मर गए हैं।

सतगुरु जी ने यह कहा कि दुनी चंद तेरा पिता जोना विच भटक रहा है, फिर तिना दिना दा भुख है, नाले ओ रोटी नहीं खांदा, ओ ता मास खांदा। तेरा पिता बगयाड़ी जोन विच है। ए गल सुनी जिन्ने लोग बैठे सन सारिया नू रोटी खानी भुल गई, सारिया दी निगाह धन गुरु नानक साहब दे चेहरे ते गड़ी गई। दुनी चंद भी हैरान हो गया, हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह जे मेरा पिता मुक्ति नू प्राप्त नहीं होया और बग्याड़ी जून विच है, मैं कई सालां तों हजारां रुपए खर्च करके इस राज भंडारे करना, ते कि मेरा ए दान पुन मेरा ए भंडारा करना सब व्यर्थ चला गया। साहब जी कहन लगे नहीं दुनी चंद, तेरे दान पुन दे सदका ही अकाल पुरख ने सानू तेरे कोल भेजिया, तेरे पिता नू मुक्त करन वास्ते। इस तरह कर, ये जिहड़ा प्रशादा तू साडे सामने रखे है इहनू चुक लै। लाहौर दे दखण वाले पासे 3 मील दी विथ ते इक झाड़ी है, उस झाड़ी दे कोल तेरा पिता बग्याड़ी जून विच तिन्ना दिना दा भुखा लम्मा पे है। डरी ना, कोल जाके आवाज मारी, वो सिर चुकेगा, मानो तेनू बुला रहा होवेगा, ते ए प्रशादा ओदे अगे रख दे। दुनी चंद ने प्रशादा टकेया, उस प्रशादे ते तन गुरु नानक साहब की मेहर की निगाह पै चुकी सी। प्रशादा लैके दुनी चंद शहर दे बाहर तुर पे आ। भगत त्रिलोचन जी कहिंदे ने, ऐ भाई जे जुड़ना विच नहीं भटकना ते आ फिर परमेश्वर का नाम जप।

परमेश्वर दे नाम वाल ध्यान नहीं सी, इस करके मैं बग्याड़ दी जूने पे आ, ते बड़ा दुख भोगे आ। पर भाग चंगे ने कि तेरे घर धन गुरु नानक साहब आए ने, उन्हां दे सदका हुण मैं तां मुक्ति नूं प्राप्त हो गए आ। पर बेटा हुण तू जा, तू भी गुरु नानक साहब दे चरणां ते डिग पै ताकि तेरा भी जन्म मरण सौर जावे। इन्नी गल कही दुनी चंद दा पिता सचखंड नूं चला गया। दुनी चंद हुण खुशी खुशी वापस

समझदी मैं बड़ी सोहनी है, मैं बड़ी तेज भजनी है, मैनू कौन फड़ सकदा। इसे हंकार दे विच ही वो मौत नूं भुल जांदी है।

सब जग बाधो काल को, सारा जग मौत दे वस है, सारियां नू मौत आनी है, पर कदू आनी किसे नू पता नहीं। मरना जरूर है, मौत तो कदी कोई बचिया नहीं, पर समझ नहीं आती इंसान फिर भी क्यों हंकार करता है। पता भी है मैं मर जाने, मेरे नाल कुछ नहीं जाना, पर इंसान फिर भी पाप करता है, फिर भी नाम नहीं जपदा, कहता है ए भी मेरा ए भी मेरा, पर कुछ भी इसका नहीं। प्यार ऐसा ही है, कहते सारे ने कि मेरा बड़ा प्यार है, पर धन गुरु नानक साहब कहते ने को मरे ना मोया नाले, जिहड़ा इंसान मर जाता है ओदे नाल मरदा कोई नहीं। एक औरत आदमी का पुत्र मर गया, बड़े रो, मां भी कवे बेटा तू ना मरदा मैं मर जाता, पिता भी कवे तू क्यों मर गया तेरी जगह मैं मर जाता, मेरी उम्र तेनू लग जाती। इन्हां दोनों का यह रोना देख के कोई महापुरुष उस पासे आ निकले।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा ए शब्द जो आप जी ने श्रवण किया है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नूं असीं जो खो चुके हां, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नूं एक यात्रा आखते हैं अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है? हाउ मैनी? इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल है।

की। भगत कबीर जी कहते ने, मैनू ना तो जंगल भी जाना पे, ना मैनू विभूत चढ़ानी पई, ए जेड़े जो कमाते हाँ अनेक तरीके दे नाल जा करके पुठे भी लटकते हैं, जा करके अपने शरीर के उत्ते विभूत भी लगाते हैं, अनेक अडंबर रचते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। पर भगत कबीर जी कहते हैं

मेरी सेजड़िए आडंबर बने अवनाशी वर सुनिया प्रभ आवत सुनिया मेरी सेज सोही देख मोही गुरु के सिख दा हिरदा हिरदे दी सेजा हिरदे दा मंदर उदो जगमगा उदो शोभनीक हों जदों साहिब प्यारा इहदे हिरदे दी सेजा दे उत्ते बैठा इस नूं आप प्रतख दीदार दिंदा है जदों वसदा हिरदे दी सेजा दे उत्ते ते फिर गुरु के सिख दे रोम रोम विचों शुकराना निकलदा है।

पहला नियम है गुरसिख दा कि गुरु की संगत करनी। सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके, ते जेड़ा सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउन वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सत संग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नवाज कहते हैं ओ गुरसिख तनखाइया है, ओ गुरसिख गुरसिख नहीं गरीब नवाज।

गुरु का दिता होया निशान केसा दे अंदर कंघा रखना ते दोनों वक्त केसा दी सफाई करनी कंघा फेरना दस्तारा जड़ा है इसनू उतार के बड़े आदर सत्कार दे नाल दस्तार नू फिर सजाउना टोपी जी सिर दे उपर धर लैनी ए गुरसिख दा कर्म नहीं कंघा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बंद आई दातन नीत करे ते मुख दी सफाई करे क्योंकि जिस मुख विचों जिस रसना नाल परमात्मा दा नाम जपना ओ रसना पवित्र होनी चाहिए ओ मुख पवित्र होना चाहिए भाई नंद लाल जी गुरसिख दोनों वक्त कंघा करे गुरसिख दस्तारा सजावे झाड़ के छंड के दस्तारा सजावे अते मुख नूं पवित्र रखे।

चोरी ठगी यारी दा पैसा कतर कर देन। साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा ते जेड़ा गुरु नूं दसवंद नहीं देंदा, किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची दरगाह।

गरीब नूं आ सच्चे पातशाह कहिंदे इक नरक नहीं हजारा नरक भोगदा है जन्म लैंदा फिर नरक विच पैंदा है जन्म लैंदा फिर नरक विच पैंदा है। इथों गरीब नूं आज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा भाई नंद लाल मेरा गुरसिख दस नहुं दी किरत करे छल फरेब दा धन दौलत मेरी दरगाह अंदर हाजिर नहीं होएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की दरगाह

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैन उसनू मां भैन दा रूप जाने, धी नू धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नू आज सचे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैन जो आवै संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करै क्रोध, कन्या मूल ना देवै सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैन नू मां भैन ना जाने, धी नू धी दा रूप ना जाने, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख, ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बच्ची दा गला घुट देना, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नू बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है उह सपुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नू इको

जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिन तक बनी रहनी रोजाना उसनु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु आज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हाथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु आज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा ओ सत जन्म कोड़ियां दे जन्म दे विच बतीत करदा। गरीब नु आज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते कोड़ा हो जांदा। होए सिख सिर टोपी धरे सात जन्म कुछ

एक वाहिगुरु अकाल पुरख महाराज दे दिते होए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। भाई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे, जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूब हू उसे तरह लिखे जान, बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वादू चंगी गल है, क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने फर्क

रोजाना दा उचारण वाहिगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहिगुरु वाहिगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहिगुरु करे, घर विच बैठा वाहिगुरु करे, रसना दे उपर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु दा टिका होवे, ते वाहिगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे, ऐसा वाहिगुरु हिरदे च वसे भई वाहिगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछे। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है। गरीब नूं सचे पातशाह ने आउण वाले समय नूं वेख्या, इस करके ए पूर ने पा दिते, गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा,

छत्रहीन एक बू न होई रहतवान गुर का सिंह सोई। गरीब नवाज कहंदे जेड़े पांच ककार दिते ने ना खालसे नूं पहनाए ने, पूरी यूनिफॉर्म तो बगैर, पूरी ड्रेस तो बगैर गुरु का सिख सिंह नहीं रह जांदा, खालसा नहीं रह जांदा। जिवें किसे ऑफिसर दी यूनिफॉर्म होवे, वर्दी होवे, उन्हूं लाजमी है वी जदों ऑफिस विच जावे, जदों काम ते जावे, जदों मालक दी हजूरी अंदर हाजरी होवे, उदों ओ जित्ती हुई ड्रेस नूं पहने। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नूं पंज ककार बख्शे ने, ते गरीब नवाज कहंदे मैं यह बर्दाश्त नहीं करांगा वी मेरा गुरसिख पंजां ककारां दा धारनी ना होवे, ला के फिरदा रवे, ऐसी गल ना होवे। शस्त्रहीन ए कबू ना होई, कदे भी शस्त्रहीन ना हो, शस्त्र हमेशा पास रखे। शस्त्र ते शास्त्र, शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ते शस्त्र है ए जेड़े पीर हन महाराज ने दिते ने रखिया वास्ते। ए हामी भरनगे सच्ची दरगाह दे अंदर के गुरु का सिख शस्त्रां दे नाल शास्त्र दी पूजा करदा सी। शस्त्रहीन ए कबू

जुआ असत झूठ बोलना, चोरी करनी, मदरा शराब पीनी, नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी दा सुपना भी इसकी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशा खेडनियां, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदक दी वरतों ना करनी। गरीब नवाज कहंदे ए पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे, ओ जवान गिनिया जाएगा, ओही असली मेरा जवान।

गुरु के सिखां कोल धन अपार है ते फिर जिस कोल धन हुंदा है उसकी कीर्ति हुंदी है जस हुंदा है। कीर्ति नूं सुन के गुरु का सिख अहंकार विच ना आवे। सुख गुरु ने दिता है सुख नूं वेख के फुलिया ना फिरे औगण ना करन लग जे। धन कीर्त सुख राज बढ़ाई युवती जित सुत विद्या बहु पाई। दूजी है विद्या, विद्या पढ़ के विचारवान वड्डा हो जांदा। किसे अहुदे ते पहुंच के गुरु ना भुल जावे, किसे अहुदे ते चंगे ते पहुंच के गुरु की सिखी ना भुल जावे। युवती सुत विद्या वो भाई ए सब दात गुरु की जाने। ए सारियां दियां सारियां गुरु कीयां दातां जाने। दातां जान के मन अंदर रंचक मात्र भी अभिमान ना आवे, ना अभिमान करे ना अहंकार करे। गरीब नवाज

नंद लाल जी मैं वचन कहना गुरसिखा नू यह गल नहीं भी केवल गुरसिखा वास्ते ही ने भाई जेडे गुरसिखा ने अमृत छकिया मैं इन्हां नू वाक दिते ने मता तुहाडे मन अंदर कोई ख्याल आ जाए भी साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इतनी करण मर्यादा दिती है सख्त मर्यादा दिती है इस करके मैं आप जी नू अपना भी एक वचन दसना जो मेरे पूरे पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी

गुरसिख दे जीवन दा नक्शा, गुरु के सिख दा जीवन ऐसा होवे, पवित्र होवे, ते फिर ओ गुरु दियां खुशियां प्राप्त हासिल कर जाएगा। नहीं ते गरीब नवाज कहंदे हन, रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै, रहत बिना सुख कबू ना लहै। कदे भी सुख उस नूं नहीं मिलेगा जिसने रहत त्याग दिती है ना। पाहल पी कुकर्म कमावत, पाहल पी के कुकर्म कमाउंदे ने उन्हां नूं तनखाइया दंड दिता जांदा। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ओनू कहंदे भी खालसा पंथ की बरादरी चो ओनू छेक दिता जावे जेड़ा अमृत छक के ते कुकर्म कमाउंदा। भाई नंद लाल गरीब नवाज सचे पातशाह दा प्यारा सिख, इसने ए रहतनामा गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कोलों लिखिया। भाई प्रहलाद साहब जी ने लिखिया, भाई देसा जी ने लिखिया, बड़े बड़े हवाले हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दिते हुए इस रहतनामे दे। गुरु के सिखो साहब सचे पातशाह जी महाराज जी के वतना मुताबक अपने जीवन नूं बतीत करिए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज फरमान।

नमस्कार गुरुदेव को। सतनाम जिन मंत्र सुनाया, पवजल विचों कढ़ के मुक्त पदा

जो प्रभु की अत प्यारी। धन गुरु नानक देव जीओ महाराज। गुरु नानक पद पंकज वंदन।

तेग बहादुर परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह वसाला तरों तरा तरपन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा जा मैं अमृत नाम है ज्ञान भक्त वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कर अनुराग गुर के शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार

कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिवत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी।

0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मारता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का कर्ता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखनी साहब दे विच वर्णन करदे हन। असी लोग ए सारियां रूहां सारियां आत्मावां परमात्मा तो विछड़िया होईयां हन। परमात्मा तो विछड़ के असी किन्ने नीवे चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लाख जून दे विच भरम दे भटकते फिरदे हां। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतते फिरदे हां। अनेक तरह के दुखां सुखां विच फसे हुए हां। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए हुए इतने पतंत्र हो गए हां। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जेड़े परमात्मा दे नेड़े हुंदे हुए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए, वो सारे कर्मां बंधनां तो रहत हो गए। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: उनां दी महिमा देवत्यां तो भी उची है। देवते भी उनां दी चरण धूड़ नूं खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने श्री सुखनी साहिब दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवत्यां दे विचों वड्डे मन्ने गए हन, जिन्हां दी भाई हिंदू मत दे विच पूजा हुंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हन शिव

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हों का जीवन बड़ा अद्भुत है, सत्संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हों की शरण के इतनी तपस्या की, इतनी भक्ति की जो अखरों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। बोलो
1: सत्संग।
0: बचपन तो ही आप जी का सुभा साधु सुभा सी, इन्हों के पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चों के जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी शिक्षा दे के बाबा जस्सा सिंह जी के जीवन नूं ए सी गुरमुख की कठाली विच ढालिया। ते साध संगत जदों शादी हो गई ते साध संगत शादी तो उपरंत आप जी का सुभाव उस तरह का ही साधुआं की संगत करने वाला सी। बोलो साधुआं की संगत करनी, दान पुन करना, इस तरह का सुभाव बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां दा सी। हुण साध संगत सहुरे जाके भी आप जी का सुभाव ऐसा ही रहा। आया गया कोई साधु फकीर, उन्होंने बड़ा प्यार करते सन। गुरु नानक साहब जाके साधुआं को बैठा करते, भाई फकीर को बैठते। सो बाबा जस्सा सिंह जी साध आए साधुआं नूं फकीरां नूं जो कुछ भी घर आउंदा उह छकाउंदे, सेवा करदे। ते साध संगत भावें घर वाला उसके ख्याल तां ठीक सन, परंतु जिहड़ी चक हुंदी है बड़ी माड़ी हुंदी है। लोगां दे ख्याल इस तरह दे हुंदे हन, किसे दा सुखी जीवन देख के लोकी जरदे नहीं हन। सो बाहर साध सुंदो खेतीबाड़ी दा वगैरा दा होर जो कुछ भी काम काज करदा है उसके कन्न भर दते कि तू तो इत्थे खेतां विच कम करदा रहिंदा है, घरवाली तेरी कदे ख्याल रखिया, वह साधुआं नूं ही खुआई जांदी है। ते साध संगत वह गुस्से दे विच आके कहिंदा है कि मेरे घरों निकल जाओ। बाबा जी कहिंदे नहीं, असीं इत्थों नहीं जा सकदे, पिता जी ने ही शिक्षा दित्ती सी बेटा, उस घर दे विचों बिना बुलाए तू नहीं आउणा है। सो साध संगत परंतु हुण उह कित्थे मानदा है, जबरदस्ती बिठा के गड्डे ते जां रस्ते बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां नूं साध संगत पिंड छड जांदा है, पिता जी कोल छड दिंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जबरदस्ती हुण पिता जी सोचदे हन बेटा असीं तां तुहानूं कहा सी कि बिना बुलाए तो आउणा नहीं है, फिर तुसीं बिना बुलाए तो किवें आ गए। कहना कीता पिता जी असीं खुद नहीं आए, जबरदस्ती छड के गए हन। ऐसी गल, ऐसा गुनाह, कहिंदे पिता जी तुहाडी शिक्षा ही गुनाह बन गई है, जिवें तुसीं शिक्षा दिंदे सी असीं तां उही कुछ करदे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। साधुआं दी संगत करनी, साधुआं नूं प्रसादा छकाउणा, इह तुहाडी शिक्षा है। बोलो सतनाम। असीं तां उसे तरह ही कर रहे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता, फिर हुण की हो सकदा है, की करिए हुण, किसे नहर च धक्का दे दिओ। कहिंदे पिता जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, आत्मघाती जगत कसाई, आत्महत्या करनी ये तां बहुत वड्डा पाप है, फिर की करिए। पिता जी सोच रहे हन, साध संगत बाबा हरदित सिंह, बोलो सतनाम। अमृत छकिया, पंजां प्यारां तों अमृत दी दात प्राप्त करके माता जी नूं कहिंदे हन, माता जी मैनू पंजां प्यारे ने नाम दी दात दत्ती है, ते नाले कहा जो तेनू ये गुरमंत्र दत्ता है, मूल मंत्र दत्ता है, नाम दत्ता है, इस नूं स्वास स्वास जपना है। बोलो सतनाम। इनू भुलाउणा नहीं है, विसारना नहीं है, नाम नूं कदे नहीं छड्डना, ये नाम दी दात गुरु तो जो मिलती है। जे माता जी आग्या होवे तां फिर मैं थोड़ा जिहा नाम जप लां। बोलो सतनाम। कहिंदे हां बेटा जरूर जपो, जरूर जपना चाहिंदा है। धन बाबा हरदेव सिंह जी साध संजू कच्चे कोठे दे विच बैठे, 22-23 साल बीत गए। बोलो सतनाम। ऐसा सिमरन, लत्तां भी साध संग कमजोर हो गईयां, तुरिया नहीं साध संग, इतने साल बीत गए तपस्या दे विच ही। बोलो सिमरन देव जिन्हां दी इतनी बंदगी सी, इतनी भगती सी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरशां नूं भी। ते साध सुण पिता जी सोचदे हन की करिए, बीबी जस्सा ते साध संगत बाबा हरदित सिंह उन्हां दी शरण दे विच आए। बोलो सतनाम। शरण दे विच आए आके बेनती की महापुरशो कृपा करो इस बालक नू अपने चरनी ला लो। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इस बालक नू अपनी चरनी ला लो। बाबा हरदेव सिंह जी कहंदे हन बालका ए तां बालकी है भाई, ए तां बालकी है। पिता जी कहंदे हन महापुरशो आप जी दी निगाह दे विच बालकी ते बालक च कोई अंतर है? आप दी निगाह दे विच तां सब इक्को ही हन। कहंदे हां साडी निगाह च तां इक हन, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: दुनिया दी इक निगाह नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नूं तां सारे ब्रह्म ही नजर आउंदा है। हुण साध संगत कहंदे साडी निगाह च तां इक्को ही है, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। कहंदे महाराज इतनी भगती इतनी तपस्या तुहानूं दुनिया दी परवाह है? बोलो सतनाम
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मैनूं तां कोई परवाह नहीं है। पिता जी कहण लगे मैनू तां कोई परवाह नहीं, तुहानूं दुनिया दी परवाह है? महापुरश हस पे कहण लगे वाह वी वाह, तू तां बई अगों दी होके घेरदा है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: इह बड़ियां सास लम्मियां विचारां हन। सास बाबा जस्सा सिंह दा ऐसा जीवन ते सास संगत क्यों बई तैयार है? फिर इह लाइन बड़ी औखी है, ये फकीरी करनी बड़ी औखी है, भेस धारना सौखा है। हां महापुरशो बाबा जस्सा सिंह ने कहना कीता इस तो बिना कोई रास्ता नहीं है, जो हुक्म होवेगा मनोगे? हां मनांगे। महापुरशा ने कहना कीता वही गल्लां दे नाल नहीं गल बननी, ये बहुत औखा रास्ता है, बड़ी औखी मंजिल है। बाणी दसदी है

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीज ना गलनी हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे हुक्म दे विच जाओ बालकिया, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, वेद लाज तिने त्याग दतियां। बोलो सतनाम
1: श्री वाहे।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज तिने लाजां दा त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोकां ने पहचान लिया है, कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती कीती सी, क्यों इसनू घरों धक्या गया। पकड़न वास्ते सास संगत मगर भाई, उसनू भी कई लोग लानता पाउण लग गए घर वाले नू, भी दस तू की गुनाह कीता सी इसने। हुण सास सिंह जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्हां दे कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: सो सास सिंह तैसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: मुर्दा होए मरीज ना गल्ली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुरपीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: सास संग 24-24 घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सास संगत कीड़ियां दे पौण ते सुट देंदे सी ना कहंदे। 24-24 घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन सास संगत उसे तरह ही हुक्म दे च पए रहंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: किते सास नूं परख हुंदी, बाबा हरदेव सिंह जी सास संग लेल दे विच सास संगत पा के गोले चलाउंदे, सास संग बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे मत्थे दे विच सास संगत मारी जांदे, मत्था चार चार उंगल, छे छे उंगल सास संग तोफण जांदा, परंतु सी ना कहंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: देखण वाले हैरान हो जांदे, परंतु किसे नूं की पता सी बाबा हरदेव सिंह जी केड़े घाट कर रहे हैं। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: सी ना कहंदे, मेरे गुरु ने, मेरे महापुरुष ने, इस करके सी नी। सात संगत ऐसा जीवन बाबा जस्सा सुना ना सी। बोलो इतना हुक्म,
2: मुर्दा हो जबे मरीद गली हो बना।

ते बाबा संगत विचों बिछड़ गया है। संगत अगे लंघ गई ते बाबा पिछे रह गया है। रस्ते दे विच खलोता है, पांड चुकी नहीं जांदी, तुरिया नहीं जांदा, ते ऐ मना हुण की करां। जंगल वियावान है, कौन मेरा समान चुकेगा, किमें मैं जावांगा। उच्ची देनी आवाज मारी, वे है कोई हो जाया जिहड़ा मेरा भार चुक लवे, मैं मजदूरी दे देवांगा। जदों बाबे ने उच्ची आवाज मारी ना, बाबा की तक रहा है, ओ सामने झाड़ियां वलों एक नौजवान गोल पगड़ी लंबा चोला, ये नौजवान आया, बाबा किथे जाना है? भई मैं सतगुरां दे दर्शन करन चलिया ते संगत विचों बिछड़ गया, पार मेरे कोलों चुकिया नहीं जा, लिया बाबा तेरी पांड मैं चुक लैंदा। बाबे दी पांड सिर ते चुकी ते बाबे दा हाथ अपने मोढ़े ते रख लिया।

सारी संगत ने आखिया सतगुरु जिन्ने भी ले आए सन सब ने भेटा दे दिती है। ते सतगुरु जानी जान मालक आखन लगे चंगा वे गरीब जे तू नहीं आउना ते मैं तेरे कोल आ जांदा। जदों सतगुरां ने इनी गल आखी ना बैराग दी हद ना रही अखां दे विचों हंजो घिर आए संगत दे विच तुरे आ रहे ने ते जिथे भाई गरीबू बैठा है आके भाई गरीबू दे सिर ते हाथ रख के आखन लगे क्यों वे गुरसिखा तू कोई भेटा नहीं।

की पवित्र वाणी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उच्चारण की हुई है। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकारत की, कहो नानक हर पज मना जय विद जल को मीन। इन्हां सारे श्लोकां विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सानू एक सुनेहा देना चाहते हैं।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है, मेरे कोल टाइम ही नहीं होगा, मेरा काम इन्ना है। ओ भलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनूं गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी, हुण तेरा कारोबार